महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बसनहा कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पन्नमगा कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे पा कूड़ मिया कूड़ विवेक होए खार कूड़ कूड़े निहो लगा बिसरिया करता किस नाल की चाहे दोस्ती सब जग चलना।

अहनुस सहज सुबई दर्शन बरसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाई।

ठाकुर तुम पहिरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुखनेरे कोई ना जाने तुमरा अंत उचेते उचा भगवंत सगल समगरी तुम

उठा हर के जाने सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई।

ठाकुर कर तल त्रिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना परवरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख नरंजन, हर पुरख नरंजन, हर गम्मा गम्मा पारा, सब त्या वहीं तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्या बहो संतो जी, सब दुख विसारन हारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बिडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जाना, तू पार बरंबे अंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाणा, जो सेव हैं जो सेव हैं तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा, हर त्या वहीं हर त्या वहीं तुद जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पाए, जैना हर त्याया जी, तिन टूटी जमकी फांसी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहण तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करें हर पूजा जी, तप ताप ही जप ही बयंता, तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत बले जन नानक जी, जो पावें मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे बड़ अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहीं चल करता सोई, तुदे आपे भावे सोई वरतै जी, तू आपे करहें सो होई, तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा, तू करता सचियार मिंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देहे सोई हों पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी ते आया, जिस नाओ कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुग वाया, तुदे आ विछोड़या आ मिलाया, तू दरिया वो सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जन सब तेरा खे,
ਵਿਯੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਯੋਗੀ ਮੇਲ, ਜਿਸਨੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇਈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਮਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਜਾਣਹੇ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੇ ਭੈਰੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹੇ ਕੀਆ, ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਹਮ ਦਿਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀਅਲੇ, ਮਾਨ ਇੱਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਵਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹੋ, ਨਾਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਇਆ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਜੈ ਨਉ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮੇਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਜੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਰੰਗ ਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ, ਚਪ ਤਪ ਸੰਜਮ

छोड़ के गए हो तुहारो द्वार, बही गहे की लाज अस गोविंदास तुहार। सगल द्वार को छोड़ के गए हो तुहारो द्वार, बही गहे की लाज अस गोविंदास तुहार। राम कली महला तीजा अनंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां वाया सह सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां

सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मसारना। अंगीकार ओह करे तेरा

है, करता तेरा सब किस है, जिस दे है सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया,

रह सच्चा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जैनो भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन वसिया, जैनो इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटों।

माटी का क्या तुपै स्वामी, मानस की गत एही। तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याई। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाले।

टल कुर सेवियै आहिने सहज सुपाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए हो वै सिफत खसमी नूरे अरसों कुरसों झटी है

शराब शुद्ध समूह सिदान के देख प्रयोग हर जोग शुद्ध सुराधन शुद्ध सुधारिक संत समूह अनेक मति सारे देश को देख देव मत को न देखित प्राणपति को न देखित प्राणपति श्री भगवान की भाई।

आप जी करो कृपा अपनी अमृतमय बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो, हुक्म अनुसार जीवन ज्यों दी समर्था बख्शो, अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करने सिख पढ़ दे।

दोहरा गया पई अकाल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, जो

सृष्ट सगल उद्धरी नाम ले तर्यो निरंतर गुण गावे सनकाद आद जनकाद जुगे लग तन तन गुर तन जन्म सके अथ भलो जग पाताल पुरी जयकार तुन कब जन कल वखाण्यो हर नाम रसक नानक गुर राजयोग तै माण्यो सतयुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेतै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस के

जगत पिता है सब प्राण को आधार, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाना। हाके बल बल बल बल सद बलिहार, अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार पर, परै ही तै परै अपर अपार पर, आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो तर, ओपत परलो एक निमख तू कर, आन नाही समसर उजियारो निर्मर, कोट पराछत जाए नाम लिए हर हर, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाना। हाके बल बल बल बल सद बलिहार।

निरारे, हर गुण नाही अंत पारे, जी जंत सब थारे, सर्व को दाता एकै अलख मुरारे, आप ही तारन तारे, कुदरत है दिखारे, बरन चेहन नाही, मुख नाम सारे, जन नानक भगत दार, तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाना, हाके बल बल बल बल सद बलिहार।